0: of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS Hindi मोबाइल, ऑनलाइन और रेडियो पर.
2: SBS Hindi के दैनिक रेडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है. ये है 14 जून 2026 की रविवार वाली शाम और आप सभी को वैशाली जैन का प्यार भरा नमस्कार. कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद मस्त होंगे. आज के SBS हिंदी कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम इस धरती के पूर्वजों, कैमरागिल राष्ट्र के लोगों और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं. हम उन सभी अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदर पूर्वक याद करते हैं जिनकी धरती पर ये कार्यक्रम आज सुना जा रहा है. दोस्तों, आज चलाएंगे गायक मुकेश के गीतों की रेलगाड़ी. मैंने पहले ऐसा नहीं किया है तो आज ये पहली बार मैं चला रही हूँ. एक्चुअली आपको क्या करना है आपको पता है? आपको मुझे सिर्फ ये बताना है कि गायक मुकेश का कौन सा ऐसा गीत है जो आपको बहुत पसंद है. 04397997667 हमारा नंबर है. कार्यक्रम में सबसे पहले प्रस्तुत करूंगी आज के संक्षिप्त समाचार, जिसके बाद करेंगे चर्चा क्यों सर्दियों में आपको कॉकरोच सरीखे पेस्ट दिख रहे हैं अपने घर में. इसके बाद करेंगे सप्ताह भर की खबरों का एक फटाफट न्यूज रैप प्रस्तुत और फिर बात होगी कि कैसे हेल्थ इंश्योरेंस को लेते समय आपको रहना चाहिए बहुत सावधान. अंत में करेंगे चर्चा राजस्थान के हरिहर मंदिरों की और फिर चलाएंगे गीतों की रेलगाड़ी भी. आज आप मुझे बता रहे हैं कि गायक मुकेश के कौन से ऐसे गीत हैं जो आपको बड़े पसंद हैं. 04397997667 हमारा नंबर है. जब तक आप मुझे संदेश भेज रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी आपके लिए लेकर के आती हूँ आज के संक्षिप्त समाचार. पेश है आज के संक्षिप्त समाचार वैशाली जैन के साथ. ऑस्ट्रेलिया में प्रवासन संख्या में बड़ी कटौती के मांगों के बीच आव्रजन यानी इमिग्रेशन मंत्री टोनी बर्क ने चेतावनी दी है कि ऐसा कदम अर्थव्यवस्था

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: बैंक मंगलवार को होने वाली अपनी बैठक में आधिकारिक नकद दर को 4.35% पर स्थिर रख सकता है। यदि ऐसा होता है तो ये 2026 की शुरुआत से पहली बार होगा जब रिजर्व बैंक ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। हालांकि महंगाई अब भी बैंक के 2-3% के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार हुई दर बढ़ोतरी के असर को भी ध्यान में रखा जाएगा। वहीं पश्चिम एशिया में जारी आर्थिक अनिश्चितता पर भी रिजर्व बैंक की नजर होगी। इस बीच पश्चिमी सिडनी में पैरामाटा नदी से एक 7 वर्षीय बच्ची का शव बरामद किया गया है। इससे कुछ घंटे पहले उसकी नाव के पास से उसके पिता का शव नदी से निकाला गया था। पुलिस शनिवार दोपहर से कॉनकॉर्ड के हेन एंड चिकन बे इलाके में बच्ची की तलाश कर रही थी। गोताखोरों ने शाम करीब 5:30 बजे उसका शव नदी से बरामद किया। पुलिस को सुबह लगभग 12:45 बजे सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नदी में तैरता हुआ दिखाई दिया है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। बच्ची की मां को इस दुखद घटना की जानकारी दे दी गई है और उन्हें सहायता प्रदान की जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दूसरी ओर फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले मुकाबले में तुर्की को 2-0 से हराकर शानदार शुरुआत की है। कनाडा के वैंकूवर में खेले गए ग्रुप डी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के लिए पहला गोल नेस्टोरी इरांकुंडा ने 27वें मिनट में किया, जबकि कॉनर मेटकाफ ने मैच खत्म होने से 15 मिनट पहले दूसरा गोल दागकर जीत पक्की कर दी। हाफ टाइम के दौरान सॉकरूज के सहायक कोच पॉल ओकॉन ने SBS से कहा था कि तुर्की की टीम दूसरे हाफ में आक्रामक खेल दिखा सकती है। इससे पहले तुर्की के कप्तान हाकान चलहान ओग्लू ने दावा किया था कि उनकी टीम ऑस्ट्रेलिया से अधिक प्रतिभाशाली है और मैच पर हावी रहेगी। ऑस्ट्रेलिया अब 20 जून को अपने अगले मुकाबले में अमेरिका का सामना करेगा। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे पाकिस्तान का कहना है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक प्रारंभिक समझौते पर अगले कुछ घंटों में हस्ताक्षर हो सकता है। हालांकि ईरान ने कहा है कि समझौता इतनी जल्दी होने की संभावना नहीं है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अनुसार दोनों पक्ष शांति समझौते के एक प्रारूप पर सहमत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि रविवार को समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद अगले सप्ताह तकनीकी स्तर पर बातचीत होगी। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान के साथ समझौते पर रविवार को हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने ये भी कहा कि समझौते के बाद वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जिसे ईरान ने बंद रखा हुआ है, तुरंत सभी के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने समझौते पर हस्ताक्षर के समय को लेकर किसी भी तरह की अटकलों से बचने की सलाह दी है। और अंत में खबरें भारत से। भारत में कई राज्यों में बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण तापमान में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में शनिवार को अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4 डिग्री से अधिक कम था। ये राहत ऐसे समय आई जब अप्रैल और मई के दौरान देश के बड़े हिस्सों में तापमान लगातार 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा था और कई मौकों पर दुनिया के सबसे गर्म शहरों की सूची में भारत के दर्जनों शहर शामिल रहे। मौसम विभाग का कहना है कि मौजूदा मौसम प्रणाली के असर से फिलहाल बारिश और गरज चमक का दौर जारी रह सकता है। हालांकि अगले कुछ दिनों में तापमान फिर धीरे धीरे बढ़ने की संभावना बताई गई है। इसी के साथ 14 जून 2026 के संक्षिप्त समाचार यहीं समाप्त होते हैं। क्या आपको भी आजकल अपने घर में बहुत सारे कॉकरोच और छोटे छोटे कीड़े दिखाई दे रहे हैं? भाई सर्दियों में तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन चाहे सर्दी हो या गर्मी, आपके घर में कीट पतंगे यानी पेस्ट्स का हमला कभी भी हो सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन के इस अंश में आज समझेंगे कि कैसे आप अपने घर को सुरक्षित रख सकते हैं पेस्ट इन्फेस्टेशन से। और इसी के साथ मैंने आपसे आज एक सवाल पूछा है कि गायक मुकेश

0: का कौन सा ऐसा गीत है जो आपको बहुत पसंद है, 04397997667 पे आप मुझे भेज सकते हैं अपने संदेश। अब आइए सुनते हैं इस अंश को।
1: सर्दियों का मौसम यूं तो ऑस्ट्रेलिया के घरों में कीट पतंगों के आने का समय नहीं होता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में कई ऐसे कीट हैं जो ठंडे महीनों में आपके घर में आ सकते हैं और किन्हीं किन्हीं इलाकों में तो ये साल भर ही नजर आ सकते हैं। खटमल, चूहे या दीमक इन कीटों में सबसे आम है। इसी के साथ आपको कॉकरोचों के लिए भी सावधान रहने की आवश्यकता है और ये ध्यान रखना भी आवश्यक है कि घर में कीट बढ़ने से कई तरह के नुकसान हो सकते हैं, जिसमें छोटी मोटी परेशानियों से लेकर आपके प्रॉपर्टी के दाम घटने तक की समस्या शामिल है। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के इस अंश में जानेंगे विशेषज्ञों से कि कैसे घर में इन कीट और जानवरों को बढ़ने से रोका जाए। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में अधिकतर कीट यूं तो गर्मियों के मौसम में ही देखने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज्यादातर कीट पतंगे गर्म और नर्म मौसम में ही प्रजनन कर पाते हैं, लेकिन अगर सर्दी की रात में भी मच्छर आपको परेशान कर रहे हैं तो जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। न्यू साउथ वेल्स हेल्थ पैथोलॉजी और यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में सहायक प्रोफेसर और कीट वैज्ञानिक कैमरून वेब समझाते हैं।
2: Some species of mosquitoes are present all year round. We've got about 300 different types of mosquitoes right across Australia, and some of them will mostly disappear during the colder months of the year, but there's others that stay very active. And it's usually mosquitoes that are in urban areas where they have access to water around our properties, and that could be everything from a rainwater tank to a pond or stormwater drain that's in the local area.
1: हालांकि सर्दियों के मौसम में घर में कीट पतंगे आ तो सकते हैं, लेकिन इनके जरिए संक्रमण फैलने की आशंका कम रहती है।
2: During the cooler months of the year, mosquitoes are probably far more likely to be a nuisance rather than a health risk. They'll be active around the home, we'll see them inside the home, they will be biting, but the risk of transmitting some of the pathogens that can make us sick are greatly reduced.
1: कॉकरोच एक ऐसे प्रकार का कीट है जो सर्दियों के मौसम में खाना, गर्मी और नमी ढूंढते हुए आपके घर में घुस सकता है। डॉक्टर वेब का कहना है कि घर में ऐसी परिस्थितियों को कम करके जिससे ये कीट आपके घर में घुसे, आप खुद को और अपने परिवार को संक्रामक बीमारियों से सुरक्षित कर सकते हैं।
2: Like cockroaches thrive when we've got accumulation of rubbish or there's waste material in the home that they can feed off and thrive. Things like mosquitoes will do well when there's water lying around our backyards or we don't have screens on our windows or our rainwater tanks. It's important to remember that if you do have an insect pest, you don't have to reach for the insecticides and chemicals immediately, because particularly their use outdoors can have impacts on beneficial insects that may also be active during the cooler months of the year.
1: उनका कहना है कि अगर आवश्यकता हो तो केवल उन उत्पादों का प्रयोग करें जो आपके स्थानीय हार्डवेयर स्टोर पर उपलब्ध हो, नहीं तो किसी प्रोफेशनल की सहायता लें। डेविड गे कीटनाशक उद्योग में पिछले 30 साल से कार्यरत है। वे बताते हैं कि साल भर में रिहायशी और कमर्शियल संस्थानों में जो सबसे ज्यादा कीट देखने को मिलते हैं वो है खटमल यानी बेड बग्स। अधिकतर मामलों में ये अनजाने में आपके घर में आ सकते हैं, जैसे आपकी यात्रा से लौटने के समय या आपके साथ आ गए या किसी मेहमान के साथ आ गए, और घर में आने के बाद ये घर में फैल सकते हैं और जरूरी नहीं है कि ये संक्रमण जल्दी में पकड़ आ जाए।
3: Fully mature bed bug probably is best described looking very similar to something like an apple seed, so they're fairly easy to see. Unfortunately though, the eggs and the early stages of their life are very small. They get into the very tight little cracks that might be in furniture, in the joints, the hinges and so forth. They tuck themselves deep into those gaps and cracks and are very, very difficult to detect.
1: Australia mein jitne vivid mausam hain, utne hi vivid prakar ke keet, yani pests bhi hain. उत्तरी ट्रॉपिकल इलाकों में कीट समस्या ज्यादा बड़ी है क्योंकि साल भर ही मौसम गर्म और नर्म रहता है। इसके बनिस्बत देश के दूसरे हिस्सों में चूहों के प्रकार के जानवर अधिक पाए जाते हैं जो सर्दियों के मौसम में घरों में घुस जाते हैं और अधिक नजर आते हैं। डेविड गे समझाते हैं।
3: Certainly in the southern states, Victoria, South Australia, the Western Australia and parts of New South Wales, the winter mice tend to be a fairly uniform problem, where the mice during the warmer months, you know, will be reasonably happy just living outside, feeding on things like just seeds and whatever they can find, living in stored items under the house or in the garage or even in dense and heavy foliage in the garden. But as the cooler weather comes on, they tend to push in, and once they get into a home, it's warm and it's got the food. Rarely are they going to leave by their own accord.
1: जब आप पेस्ट इन्फेस्टेशन से निपटने के लिए किसी विशेषज्ञ से बात करते हैं तो ये सुनिश्चित अवश्य करें कि वे सर्टिफाइड हों यानी पंजीकृत हों। ऑस्ट्रेलियन एनवायरमेंटल पेस्ट मैनेजर्स एसोसिएशन यानी AEPMA कीटनाशक विशेषज्ञों के उद्योग की शीर्ष संस्था है जो शहरी वातावरण में काम करती है। इसके सभी सदस्य पेस्ट कंट्रोल कार्यक्रम करने के लाइसेंस प्राप्त हैं। AEPMA के बोर्ड सदस्य रॉब बॉशमा का कहना है कि चूहों और छछुंदरों के मामले में लोगों में एक आम भ्रांति बनी हुई है।
4: It's just the number and the level that makes the difference.
1: रॉब पॉशमा कहते हैं कि चूहों की रोकथाम में सबसे अहम बात बचाव है। वे ऐसी आम स्थितियों का ब्यौरा देते हैं जिसमें एक प्रॉपर्टी में चूहे और छुछंदर आ सकते हैं।
4: Making sure you don't get rodents or at least reducing those numbers in the first instance is probably the best thing that you can do. Certainly we see people who have larger numbers of rodents, they tend to have buildings or conditions that let rodents get into their house, so vines and bushes that abut houses. Subfloor areas, so under the house where there's gaps and holes that let rodents have come in quite easily. Other things like harbourage, building refuse and things like that. If you've got a compost, if you can have those concealed in a sort of an off-the-ground compost. If you have chooks.
1: हालांकि दीमक एक सीधी स्वास्थ्य समस्या नहीं है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया भर के घर मालिकों के लिए एक बड़ा सरदर्द है। लकड़ी में लगने वाली दीमक अगर पकड़ नहीं आती तो ये पूरी प्रॉपर्टी में लकड़ी के ढांचे को खोखला कर सकती है और दीमक गर्मियों और सर्दियों दोनों में फैल सकती है। विशेषज्ञ बॉशमा फिर समझाते हैं।
4: And termites get into buildings, it literally, you know, it erodes the value of that place. What makes it so challenging is that they are covert. So termites will stay under the floors or in the wall cavities. Most people probably have termites in their house for at least 5 years before they become aware of it. And then generally if something happens, the door will fall off the hinges or the foot goes through the floor or the vacuum cleaner going through the skirting board is a really common one. And that's when they're sort of alerted to the fact that termites have made it into their house.
1: जीवन शैली के कारण होने वाले पेस्ट इन्फेस्टेशन यानी कीट संक्रमण की जिम्मेदारी किराएदारों की होती है, लेकिन दीमक की जिम्मेदारी मकान मालिकों की होती है। लेकिन परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, श्री बॉशमा समझाते हैं कि कीट संक्रमण यानी पेस्ट इन्वेजन के बारे में आप अपनी प्रॉपर्टी मैनेजर से बात जरूर करें।
4: It sort of depends on the situation there. If it's a pest issue that's come about because of the natural environment around or perhaps the building structure and its conditions, say for example termites, that would fall within the landlord's responsibilities. But either way, you should speak to the property manager and make sure that all parties have agreed to whatever is being commissioned.
1: ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के इस अंश को आपके लिए SBS न्यूज से जोई थॉमडू और SBS हिंदी से वृषाली जैन ने प्रस्तुत किया। इस अंश के बाद कार्यक्रम में वक्त हो चला है पहले अंतराल का। अंतराल के उस पार सप्ताह भर की न्यूज सुनेंगे एक न्यूज रैप में फटाफट से, और आपके लिए लेकर के आएंगे गायक मुकेश का एक बहुत प्यारा गीत भी जो पर्सनली मुझे तो बहुत पसंद है और मुझे ये मालूम है कि आप लोगों को भी बहुत पसंद है। तो 04397997667 पे आप संदेश भेजकर मुझे बताते रहिए कि मुकेश के कौन से ऐसे सदाबहार गीत हैं जो आपको बहुत पसंद है, और मैं आज आपके लिए वही गीत लाने की कोशिश करूंगी। लेकिन फिलहाल समय है एक छोटे से अंतराल का। अंतराल के बाद फिर हाजिर होती हूँ। आप सुनते रहिए SBS हिंदी को।
5: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
6: Ready to order?
7: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
6: Everything?
8: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
9: Yes, Chef!
7: This is so nice.
8: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
7: Ooh, tiramisu!
8: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver card. Capital One, what's in your wallet?
10: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
6: SBS Audio.
9: अपने मनपसंद ऑडियो को सुनने के लिए प्ले दबाएं.
10: यहीं जाओ दादिया. चुनबे हालमा.
11: SBS Chill.
12: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
13: Can you describe that?

0: SBS हिंदी उपलब्ध करवाता है.
1: Far from the partisan politics.
0: 60 से अधिक भाषा में समाचार के साथ आपके मूड से मेल खाने वाला संगीत और मनोरम पॉडकास्ट आपका इंतजार कर रहे हैं. SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें या फिर
1: sbs.com.au/audio.
2: ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर. आप सुन रहे हैं वृषाली को और मेरे पास आपके संदेशों की एक बड़ी सी कतार आ गई है. मुझे कुमार जी ने संदेश भेजा है कि दम भर जो उधर मुंह फेरे मुकेश जी और लता जी का गीत है और उन्होंने ये भी कहा कि दोस्त दोस्त ना रहा भी सुन सकते हैं वो. फिर मेरे पास एक बहुत प्यारा सा संदेश आया है जगदीश जी, पुष्पा जी और निधि चंद्रा जी का, जो मुझे ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, जिसके लिए बहुत बहुत बहुत शुक्रिया. लेकिन उन्होंने संदेश भी बड़े मीठे तरीके से शुरू किया है, जो वो लिखते हैं, हेलो वृषाली बेटा, एक या दो तो आज सुनाई देना. जी मैं पूरी कोशिश करूंगी. और फिर उन्होंने एक लंबी फहरिस्त भेजी है जिसमें से मैं आपके लिए एक या दो गीत जरूर लेकर के आऊंगी. और उन्होंने मुझे एक धमकी भी भेजी है. वो कहते हैं और गाना पूरा सुनाना वरना हम आपसे नाराज हो जाएंगे. नहीं जी, मैं आपको बिल्कुल नाराज नहीं करूंगी, मैं आपको पूरा गीत सुनाऊंगी. और मेलबर्न से आलोक जी लिखते हैं कि चंदन सा बदन फ्रॉम फिल्म सरस्वती चंद्रा इज अ नाइस सॉन्ग. जी मैं कोशिश करूंगी लेकर आने की. मेरे पास दो तीन क्या कहते हैं ना, मेरी लिमिटेशंस होती हैं भाई, इतनी सारी रिक्वेस्ट होती हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक एक मुखड़ा, एक एक अंतरा सुना करके सबको थोड़ा थोड़ा खुश कर दूं. लेकिन आज मैं आपका गीत पूरा सुनाऊंगी जगदीश जी, पक्का. तो आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, पहले सुनते हैं सप्ताह भर का न्यूज रैप और फिर आपके लिए आपकी पसंद का एक गीत लेकर के आते हैं मुकेश का. और मुकेश साहब का कौन सा गीत आपको पसंद है आप मुझे बता सकते हैं 04397997 पर. प्रस्तुत है 13 जून 2026 को समाप्त होने वाले सप्ताह का न्यूज रैप वृषाली जैन के साथ. फेडरल सरकार ने एनडीआईएस को लेकर राज्यों और क्षेत्रों की चिंताओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित बताया. भारत ने नाविकों की मृत्यु पर जताया अमेरिका के साथ कड़ा विरोध. और ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की के खिलाफ अपने विश्व कप अभियान में कप्तान मैटी रायन को किया बाहर. और अब सप्ताह भर की खबरें विस्तार से. राष्ट्रीय विकलांगता बीमा योजना यानी एनडीआईएस में प्रस्तावित बदलावों को लेकर राज्यों और क्षेत्रों की चिंताओं को फेडरल सरकार ने बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया बताया है. योजना की देखरेख करने वाले फेडरल स्वास्थ्य मंत्री मार्क बटलर ने कहा कि सुधारों में किसी बड़े अपवाद की संभावना नहीं है, भले ही विकलांगता क्षेत्र विशेषज्ञ और राज्य और क्षेत्रों के मंत्री इन बदलावों पर चिंता जता रहे हों. प्रस्तावित सुधारों के तहत लगभग 1,60,000 लोगों को एनडीआईएस से हटाकर राज्यों द्वारा संचालित अन्य सहायता कार्यक्रमों में स्थानांतरित किया जाएगा. सरकार का कहना है कि ये कदम $56 अरब की इस योजना की लागत को नियंत्रित करने के लिए उठाया जा रहा है. हालांकि सीनेट की जांच समिति को भेजे गए अपने संयुक्त प्रस्ताव में राज्य और क्षेत्रीय विकलांगता मंत्रियों ने कहा है कि उनके अधिकार क्षेत्र इन बदलावों के लिए तैयार नहीं हैं और कई एनडीआईएस प्रतिभागी सहायता व्यवस्था से बाहर रह सकते हैं. मार्क बटलर ने इन आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि राज्यों और क्षेत्रों की आलोचना वास्तविक स्थिति से कहीं अधिक बढ़ा चढ़ाकर पेश की जा रही है. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई वाहन चालकों को अगले महीने से पेट्रोल और डीजल के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि ईंधन पर दी गई अस्थायी कर राहत 30 जून को समाप्त होने वाली है. ईरान में जारी संघर्ष के बीच बढ़ती ईंधन लागत से राहत देने के लिए सरकार ने फ्यूल एक्साइज में कटौती और जीएसटी रियायत लागू की थी. ये दोनों उपाय अब महीने के अंत में समाप्त हो जाएंगे. ऊर्जा मंत्री क्रिस बावन ने कहा है कि प्रति लीटर 32 सेंट की टैक्स छूट को समाप्त करने की योजना में कोई बदलाव नहीं हुआ है, हालांकि सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है. इस बीच टैक्स व्यवस्था में प्रस्तावित बदलाव लागू होने से पहले ही कई निवेशक अपनी निवेश संपत्तियां बेच रहे हैं. इससे बिक्री के लिए उपलब्ध घरों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन किरायों के मकानों की उपलब्धता घटती जा रही है. देश भर में किराए के लिए उपलब्ध संपत्तियों की सूची में सालाना आधार पर बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जिसमें मई महीने में सबसे तेज कमी देखी गई. सभी राजधानी शहर इस प्रवृत्ति से प्रभावित हुए हैं. होबार्ट में किराए की लिस्टिंग केवल 0.3% घटी, जबकि डार्विन में

2.1% और मेलबर्न में 1.7% की गिरावट दर्ज की गई। न्यूओवेल के आंकड़ों के अनुसार सिडनी सबसे अधिक प्रभावित रहा। वहां मई में किराए की लिस्टिंग 1.5% और पिछले एक वर्ष में 9.8% तक कम हो गई है। दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया भर में शार्क हमलों में बड़ी तेजी देखी गई है। सिडनी के कई समुद्र तट अब भी तैराकों और सर्फिंग करने वालों के लिए बंद है, क्योंकि कूजी बीच पर एक महिला शार्क के हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई। ये हमला शनिवार सुबह 11 बजे सिडनी के लोकप्रिय कूजी बीच पर किनारे से कुछ ही मीटर की दूरी पर और लाइफगार्ड्स के झंडों के बीच हुआ। करीब 30 वर्ष की उम्र की बताई जा रही इस महिला को एक ड्यूटी से बाहर मौजूद लाइफगार्ड ने पानी से बाहर निकाला। बाद में उसे एयर एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वेस्टपैक लाइफ सेविंग रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के फुटेज में हमले के बाद समुद्र में एक अकेली शार्क

0: you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: एक माह में ऑस्ट्रेलिया भर में तीसरा शार्क हमला है। वहीं नॉर्दर्न टेरिटरी में युवा अपराधियों के दोबारा अपराध करने की दर फिलहाल मापी ही नहीं जा रही है, जबकि वहां की सरकार अपनी सख्त अपराध रोधी नीतियों की सफलता का दावा कर रही है। 2024 में सत्ता में आने के बाद कंट्री लिबरल सरकार ने अपराध कम करने के उद्देश्य से कई नए कानून लागू किए। इनमें कड़े जमानत कानून और आपराधिक जिम्मेदारी की न्यूनतम उम्र घटाकर 10 वर्ष करना शामिल है। हालांकि वयस्क अपराधियों में दोबारा अपराध करने की दर अब भी लगभग 60% बनी हुई है और जेलों में कैदियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। इस बीच करेक्शंस मंत्री मैथ्यू वॉली ने एंट्री एस्टिमेट्स की सुनवाई के दौरान ये स्वीकार किया कि युवाओं में दोबारा अपराध करने की दर में कोई सुधार हुआ है या नहीं, इसका आकलन करने के लिए सरकार के पास कोई नया आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। और अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में पुलिस और प्रतिबंधित विरोध आंदोलन के समर्थकों के बीच हुई झड़पों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। ये जानकारी आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर AFP की रिपोर्ट में दी गई। जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC के समर्थक आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि पिछले सप्ताह इस संगठन को आतंकवाद रोधी कानूनों के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसके बावजूद प्रदर्शन जारी है। सोमवार को अधिकारियों ने बताया कि झड़पों में 7 लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें 3 नागरिक और 4 पुलिसकर्मी थे, जबकि कई अन्य घायल हुए। AFP के हवाले से आई रिपोर्ट के अनुसार मुजफ्फराबाद में JAAC के समर्थन में बड़ी संख्या में दुकानों को बंद रखा गया। स्थानीय कारोबारियों की हड़ताल की अपील का असर भी देखने को मिला। वहीं क्षेत्र के निवासियों के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी बड़े पैमाने पर बाधित रहीं। और अब सप्ताह भर की खबरें भारत से। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे ने इस सप्ताह सुर्खियां बटोरी। 13 जून को प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर रवाना हुए। फ्रांस के नीस शहर में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा, निवेश और रणनीतिक सहयोग प्रमुख मुद्दे रहे। भारत और अमेरिका के संबंधों में भी इस सप्ताह तनाव देखने को मिला। ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के दौरान एक तेल टैंकर पर हुए हमले में 3 भारतीय नाविकों की मृत्यु हो गई। इस घटना पर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए अमेरिकी राजनयिक को तलब किया। वहीं पंजाब में एक व्यक्ति को पाकिस्तान के लिए कथित तौर पर भारतीय सेना की गतिविधियों की निगरानी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा मोर्चे पर पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में सुरक्षा बलों ने 31 जिंदा बम बरामद किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि समय रहते कार्रवाई से संभावित हिंसा को टाल दिया गया। आर्थिक क्षेत्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नया रिकॉर्ड बनाया। कंपनी 2025-26 वित्तीय वर्ष में 120 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। वहीं हिमाचल प्रदेश में चुनाब नदी के जल प्रबंधन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सुरंग परियोजना पर काम तेज किया गया। श्रमिकों के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि सरकारी विभागों में कार्यरत अस्थायी और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी पेंशन लाभ का अधिकार है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां भी अब जोरों पर हैं। 21 जून को होने वाले आयोजन से पहले भारतीय दूतावासों ने दुनिया भर में विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं, जिनमें 33 से अधिक देशों के प्रतिभागियों वाली योग कार्टून प्रतियोगिता भी शामिल है। और अंत में खबरें खेल जगत से। ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉल कोच टोनी पॉपोविच ने तुर्की के खिलाफ विश्व कप से पहले मुकाबले के लिए टीम चयन में बड़ा चौंकाने वाला फैसला लिया। उन्होंने टीम के कप्तान और अनुभवी गोलकीपर मैटिरियान को बाहर रखते हुए केवल 2 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके पैट्रिक बीच को शुरुआती एकादश में जगह दी। पॉपोविच ने उप कप्तान जैक्सन इरविन को भी टीम से बाहर रखा और उनकी जगह 21 वर्षीय मिडफील्डर पॉल ओकॉन एंगस्टलर को मौका दिया। ऑस्ट्रेलिया टीम की शुरुआती एकादश में 10 ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहली बार विश्व कप खेलेंगे। टीम की औसत उम्र 24.6 वर्ष है, जबकि सेंटर बैक हैरी साउटर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें पहले विश्व कप खेलने का कोई अनुभव है। इसी के साथ 13 जून 2026 को समाप्त होने वाले सप्ताह का न्यूज रैप यहीं समाप्त होता है।

और मेरे पास जगदीश जी का संदेश आया है कि वे सब मेलबर्न से हैं, तो आपका बहुत स्वागत है शो में और आपके लिए खास ये गीत मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए मिल करके सुनते हैं मुकेश जी का ये गीत। और अगर आप कोई गीत सुनना चाहते हैं मुकेश जी का, तो 04397997667 पर मुझे बता सकते हैं, वरना कुछ और भी कहना चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं, ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है, यही बात करनी है हमें।

और इसी के साथ वक्त हो चला है एक ब्रेक का। वैसे मैंने जब पहली बार ये फिल्म देखी थी ना, तो मेरे लिए ये मानना बहुत मुश्किल था कि इस तरीके का समर्पण कोई किसी को दे सकता है। खैर, ये मेरा अपना ओपिनियन है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के उस पार करेंगे चर्चा कि आपके स्वास्थ्य बीमा पे आपको किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है, जरूर सुनेंगे मिलकर के, और गीतों की रेलगाड़ी तो साथ में रहेगी ही। तो बस एक छोटा सा अंतराल, फिर हाजिर होती हूँ। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिएगा SBS हिंदी को।

0: su SBS.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए. ताजा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए. sbs.com.au/hindi पर जाएं. क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर. हमारा पेज लाइक करें. SBS हिंदी फेसबुक पर भी है.
4: ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर. आप सुन रहे हैं वृषाली को और मेरे पास चेतन शाह जी का संदेश आया है जो मुझसे कह रहे हैं कि आई वुड लव टू लिसन टू द सॉन्ग फ्रॉम द मूवी रोटी कपड़ा मकान मैं ना भूलूंगा. चेतन शाह जी, मुझे बराए माफी आपसे कहना पड़ेगा कि मेरी लाइब्रेरी में इस समय ये गीत नहीं है. अगर कोई और गीत सुनना चाहते हैं तो मुझे जरूर बता दें. कुमार साहब ने मेरे पास कई सारे गीतों की एक लिस्ट भेजी है जिसमें डम डम डिगा डिगा, ओ जाने वाले, हो सके तो लौट के आ जा जैसे गीत है. मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए लेकर के आऊं. और रोचक कह रहे हैं होल्सवर्थी सिडनी से कि कहीं दूर जब दिन ढल जाए वो सुनना चाहते हैं. और मेरे पास राजेंद्र वोरा जी का क्रेगी बर्न से भी संदेश है जिन्होंने दो गाने भेजे हैं मेरे पास. बेगुनाह का जिसके बोल हैं ए प्यासे दिल बेजुबा तुझको ले जाऊं कहां, और दूसरा राज कपूर की फिल्म का है जिसके बोल हैं किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार. मेरी लाइब्रेरी में जो उपलब्ध होगा मैं आपके लिए जरूर लेकर के आऊंगी, ये बात का पक्का वादा. इसी के साथ आइए चर्चा करते हैं कि जब आप एक निजी स्वास्थ्य बीमा लें तो उसमें किन बातों का ख्याल रखें.
5: ऑस्ट्रेलियाई जनता के पास अच्छी और किफायती सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है. लोगों के पास निजी स्वास्थ्य बीमा का चुनाव भी उपलब्ध है जो कम प्रतीक्षा समय और अधिक विशेषज्ञों और अस्पतालों के विकल्प देता है. 55% ऑस्ट्रेलियाई किसी न किसी हेल्थ फंड का चुनाव करते हैं. आप भी इसके बारे में सोच सकते हैं. मेडिकेयर और मुफ्त और कम कीमत की अस्पताल व्यवस्थाएं ऑस्ट्रेलिया की स्वास्थ्य व्यवस्था को विश्व की शीर्ष सेवाओं में से एक बनाती है. लेकिन कई बार मांग को पूरा करना और निजी स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ काम करना मुश्किल हो सकता है. तुलनात्मक वेबसाइट फाइंडर्स में बीमा विशेषज्ञ टिम बेनेट का कहना है कि मेडिकेयर हमें जिंदा तो रख सकता है लेकिन हर तरह की समस्या में सहयोग नहीं दे सकता.
6: In fact, Australia has one of the better public healthcare systems in the world. That being said, it doesn't cover everything. For example, dental work is not covered under Medicare. Ambulance is not covered under Medicaid. What private health insurance tries to do is take some of the burden off Medicare by letting people who can afford it opt into using the private healthcare system or by using extras cover, which just gives you a bit of extra cover outside of hospital.
5: कानून के अनुसार अस्पताल से बाहर किए जाने वाले टेस्ट, इमेजिंग जांच और जीपी शुल्क निजी बीमा कवर से भरे नहीं जा सकते. निजी बीमा आपको हॉस्पिटल और एक्स्ट्रास कवर देता है. हॉस्पिटल कवर निजी मरीज भर्ती के शुल्क को पूरा करता है. उदाहरण के तौर पर निजी सेवा के अंतर्गत आप अपने सर्जन से अपनी चुनी हुई तारीख पर सर्जरी करा सकते हैं. एक्स्ट्रा कवर आंखों की देखभाल, दंत चिकित्सा, फिजियोथेरेपी जैसी अन्य स्वास्थ्य सेवाओं में सहायक है. हॉस्पिटल और एक्स्ट्रा अलग अलग खरीदे जा सकते हैं या एक पैकेज के तौर पर भी लिए जा सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया आने वाले आगंतुकों और कुछ वीजा धारकों को ओवरसीज विजिटर्स हेल्थ कवर लेना अनिवार्य है. प्राइवेट हेल्थ केयर ऑस्ट्रेलिया की मुख्य सचिव डॉक्टर रेचल डेविड कहती हैं,
7: So if you come in on certain types of working visa as a skilled migrant or you come in on an overseas student visa, you will have to have private health insurance. Once they become a permanent resident, you have the choice of just being on Medicare alone. But increasingly we're finding that particularly at the skilled migration level, permanent residents are choosing to stick with private health insurance.
5: हाल में निजी बीमा लेने वालों की संख्या बढ़ी है. डॉक्टर डेविड समझाती हैं कि ऐसा कोविड महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था पर अत्यधिक भार पड़ने के कारण भी हुआ है.
7: Its ability to offer timely elective or planned surgery has really deteriorated. And for a lot of jobs that the migrant

0: workforce are coming in and doing, they can't afford to take weeks off waiting for surgery. And that's just a fact. I mean, if you're injured, people just can't afford to down tools for 3 to 6 months to wait for some random outpatient appointment in a public hospital.
1: निजी स्वास्थ्य सेवा सर्जरी और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में प्रतीक्षा के छोटे समय दे सकती है, इसलिए आर्थिक रूप से संपन्न लोग निजी कवर में निवेश करते हैं। इससे सार्वजनिक व्यवस्था पर भी भार कम होता है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों तक अधिक सहायता पहुंचाई जा सकती है। लेकिन आपके कवर के निजी या सार्वजनिक होने से आपको दी जाने वाली देखभाल की गुणवत्ता पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जनरल प्रैक्टिशनर क्रिस मॉय समझाते हैं।
2: Doctors and other health providers work under ethical principles where they really should be taking your care as a priority, whether or not they are providing that care from the public health system or the private health system. And that means that they should have your health as the priority and work with you.
1: निजी बीमा के प्रीमियम महंगे हो सकते हैं, इसलिए सरकार इनको लेने के फायदे देती है। डॉक्टर डेविड समझाती हैं कि निजी बीमा धारकों को टैक्स छूटें दी जाती हैं।
0: There are certain incentives in place to encourage people who are on higher incomes to take out private health insurance, but also to support some people who are on lower incomes, particularly people that have some of the more complex health needs, to maintain private health insurance. So for people on lower incomes, the government pays a rebate on their premiums.
1: ये छूट पॉलिसी की लागत यानी प्रीमियम की 25% होती है, जो आपके टैक्स रिटर्न में आपको लौटा दी जाती है। आपकी योग्यता पॉलिसी के प्रकार, आयु और आय पर निर्भर करती है। निजी बीमा लेने के बाद आप मेडिकेयर लेवी सरचार्ज से बच सकते हैं। ये सरचार्ज अधिक आय वाले उन लोगों पर लगाया जाता है जिनके पास निजी हॉस्पिटल कवर नहीं होता। डॉक्टर डेविड से सुनिए।
0: Everybody that's working pays a Medicare levy to support Medicare, which is part of their income tax. But for people without private health insurance whose income for a family is above about $183,000 per year, they will pay an extra Medicare levy if they don't have insurance. So that does encourage people to take it out.
1: स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर लेवी और आय सीमा की पूरी जानकारी आपको मिल सकती है। तीसरा फायदा लाइफ टाइम हेल्थ कवर लोडिंग का होता है। 30 वर्ष से अधिक के पॉलिसी धारकों को पहले पहल बीमा लेने पर अधिक प्रीमियम भरना पड़ता है। डॉक्टर डेविड समझाती हैं कि ये न्याय संगत भी है।
0: That stops a situation where someone who joins for the first time at age 85, when they've already got a number of health conditions, pays the same premium as a 25-year-old. And that stops a huge financial burden being transferred to younger people. So if you're over 30 and you're joining private health insurance for the first time, you will pay a loading for a certain number of years. And then if you maintain your membership for over 10 years, then that fades out.
1: आपने गैप फीस या आउट ऑफ पॉकेट खर्चे के बारे में तो सुना ही होगा। ये वो अंतर है जो इलाज के खर्चे और आपके बीमा प्रदाता द्वारा चुकाए गए देय के बीच होता है। डॉक्टर मोए समझाते हैं।
2: If you are provided care either by a general practitioner or a specialist or in a hospital, even if you have private health insurance, in these situations, either Medicare or your private health insurance will basically pay a rebate to help you pay the cost of that service. The health practitioner or the doctor can charge an amount above that, and this is what you call the gap. And the reason why they do that is over time, Medicare, for example, has not kept up with inflation.
1: सरकारी अस्पताल में गैप फीस नहीं देनी होती, लेकिन आप पर एक्स्ट्रास का खर्चा आ सकता है। अगर आप निजी मरीज के तौर पर अस्पताल में भर्ती हुए हैं, तो आपको एक्सेस भी भरना होगा। ये किसी भी बीमा के दावे के जैसा ही है। सही निजी बीमा का चुनाव करना आपके लिए आपकी आवश्यकताओं और बीमा कंपनी के उत्पाद के बीच सही सामंजस्य बिठाना होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको जितनी हो सके उतनी जानकारी जुटानी चाहिए। टिम बेनेट समझाते हैं।
3: Unfortunately, there's no quick way to do it. The best thing to do is to try and get a little bit of information, have a look at what the policies are offering, and then compare them. And then, over time, your needs will change. So just because you've taken out one policy, it doesn't mean that you shouldn't check again in 1 or 2 years to see if you're still getting the best possible price.
1: Premium is baat par nirbhar karega ki aap kis tarah ka cover lete hain, aur ek vyakti ke liye lete hain ya pure parivar ke liye lete hain. Aap apne vikalpon mein sarkari website privatehealth.gov.au par या चॉइस फाइंडर और कंपेयर द मार्केट जैसी वेबसाइट्स पर तुलना कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के इस अंश को प्रस्तुत किया SBS न्यूज से मेलिसा कॉम्पनोनी और SBS हिंदी से वृषाली चैन ने।
4: और दोस्तों, अब ये

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvinciblewiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Twirl those wheels!
2: GEICO knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
1: And one, and two, and three, and four, and seven.
2: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from GEICO's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
3: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
2: It feels good to be a road you. It feels good to GEICO.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on two purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit Dick's.com/scorecardplus for details.
5: Knock, knock, Capital One Bank guy.
6: Wow, Charles Barkley?
5: I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
6: Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
5: Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
6: Anything for a neighbor.
5: Can I try the catchphrase?
6: Sure, take it for a spin.
5: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
6: Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
7: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One NA member FDIC.
8: और ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है SBS हिंदी पर. आप सुन रहे हैं वृशाली को. जफर साहब का संदेश आया है कि वे गाना सुनना चाहते हैं, जान सी महबूबा होगी मेरी. सुनाऊंगी, लेकिन पहले सुनेंगे ये सेगमेंट जहां पर हम बात कर रहे हैं राजस्थान के हरिहर मंदिरों की. भाई कहां है ये मंदिर और कहां आप इनको जा करके देख सकते हैं, अनीता जी से समझते हैं इस अंश में.
9: राजस्थान की गौरवशाली परंपरा का हिस्सा हैं उसके हरिहर मंदिर. इन मंदिरों को छोटे स्तर पर खुजराहो के मंदिर से सोचा जा सकता है. जानते हैं जोधपुर के करीब 60 किलोमीटर दूरी पर ओसिया नाम का एक कस्बा है जो मारवाड़ का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और व्यापार केंद्र हुआ करता था. ये जोधपुर जिले के लगभग बीच में ही स्थित है और जिसकी पहचान है जैसे बालू के टीले. वैसे इस जगह पर वैज्ञानिक अध्ययन हो रहा है इसकी सूखी हुई नदियों के बारे में, लेकिन जो आरंभिक खोज हुई है उससे कुछ संकेत मिलता है कि ये क्षेत्र शायद इतना कभी सूखा नहीं रहा होगा. ओसियां ग्रेट इंडियन डेजर्ट यानी भारत के महारेगिस्तान के बीच में एक मरु उद्यान या मरु द्वीप के रूप में स्थित है जो कि इस क्षेत्र की बहुत ही मूल्यवान सांस्कृतिक अवशेषों की जैसे रक्षा करता है. यहाँ पर जो मंदिर हैं, स्मारक हैं और जो दूसरे अवशेष मिलते हैं वो इस बात को पक्का करते हैं कि ओसियां प्राचीन काल में कभी एक व्यापक विशाल शहर रहा होगा. हालांकि आजकल यानी वर्तमान में इसे जैन तीर्थ केंद्र यानी राजस्थान के ओसवाल समुदाय की उत्पत्ति के रूप में अधिक जाना जाता है, फिर भी इसकी प्राचीनता और ऐतिहासिकता को लेकर विद्वानों के बीच में बराबर बहस होती रही है, तर्क वितर्क चलता रहा है. कारण चाहे कुछ भी रहे, पर्यटक और विद्वान इसके तीन मंदिरों के लिए यहाँ की यात्रा करते हैं और इन मंदिरों को राजस्थान में प्राचीनतम मंदिर समझा जाता है. इन मंदिरों को प्रथम से तृतीय तक तीन हरिहर मंदिरों का नाम दिया गया है. अब अगर इनकी तुलना खुजराहो या दक्षिण भारत के मंदिरों से की जाए तो उसकी अपेक्षाकृत ये मंदिर आकार में बहुत छोटे हैं, लेकिन इनका वास्तुशिल्प डिजाइन में जो विविधता है और जो विशिष्टता है वो सब मौलिकता से होती है. खुजराहो मंदिरों से विपरीत ओसिया के मंदिर अधिक शांत, सौम्य और संतुलित हैं, लेकिन जो उनकी संरचना है, जो उनका सौंदर्य है, वो किसी भी तरह से सीमित नहीं है। दो हरिहर मंदिर अपनी योजना और अपने उत्थापन में पंचायतन यानी पंच वृक्ष हैं। इसका अर्थ है कि वो एक ऊंचे आयताकार मंच या वेदिका पर स्थित हैं और उसके केंद्र में मुख्य वेदी है यानी मूल प्रसाद है और छोटी जो वेदिकाएं हैं वो चारों कोनों में स्थित हैं। इसका जो तीसरा मंदिर है वो भी एक वेदिका पर बनाया गया है, लेकिन उसमें दूसरी छोटी वेदिकाओं के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। तो जो बीच की ऊंची वेदिका है वो भवन को वातावरण से जैसे ऊंचा उठाती है और मंदिर के चारों ओर खुला स्थान है यानी विचरण स्थल। अब इसकी रचना इस तरह की है कि जैसे ही श्रद्धालु वेदिका तक पहुंचते हैं तो उसके सामने बाईं और दाईं ओर दोनों वेदिकाएं खुलती हैं, जबकि दो अन्य वेदिकाएं उसके पीछे बाईं और दाईं होती हैं। तो इस तरह से एक ही समय पर जो श्रद्धालु मंदिर में जाता है वो पांचों देवताओं के सामने प्रस्तुत होता है। अब इन तीनों मंदिरों की अगर अलग अलग बात करें तो जो तीसरा मंदिर है यानी जिसकी संख्या तीन दी गई है उसमें एक फ्रेम बनता है, क्योंकि कहा जाता है कि उसमें देव प्रतिमा को प्रतिष्ठित किया जाता था। और हरिहर मंदिर जो संख्या एक है उसमें जो मुख्य वेदी है उसकी चौखट में चार जैसे विशेष बाजू हैं जिन पर नक्काशी की गई है।

0: और उसकी दहलीज पर कल्प वृक्ष, जिसे कहते हैं कि इच्छाएं पूरी करने वाला वृक्ष है, तो वहाँ कल्प वृक्ष चित्रित किया गया है। और जो हरिहर मंदिर संख्या 2 है, उसकी सीढ़ियाँ ढकी हुई हैं और मंदिर गर्भ के साथ वहाँ पर एक ढका हुआ मंडप है, जिसे सभा मंडप या रंग मंडप कहा जाता है। इस मंदिर की वेदिका पर नक्काशी की गई है और अन्य चीजों के साथ कलश और चैत्य बूटे बनाए गए हैं। अब हरिहर मंदिर संख्या 2 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है इसके प्रांगण की गुंबद आकार की छत और गलियारे के भीतर छोटे छोटे आले जो नक्काशीदार पत्थरों से भरे हुए हैं। राजस्थान के ये जो हरिहर मंदिर हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय, ये भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का एक बहुमूल्य हिस्सा है, जो पर्यटकों और विद्वानों और इतिहासकारों के लिए एक ही स्तर पर आकर्षण का केंद्र है।
1: और इसी के साथ वृषाली आज के लिए आपसे ले रही है विदा। आपको दिए जा रही है इस गीत का नजराना, फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए रखिएगा अपना बेहद ख्याल।

0: you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: So, Pawan mein Asian Quadrangular Football Tournament mein hui thi.
3: Pakistan ne pehli dafa international tournament jeet liya, standalone tournament. Arsa tabeel ke baad Pakistan ko football ki ek trophy mili hai. Main tamam players ka, coaches ka, management ka, shaikin ka, fans ka shukr guzar hoon. Ye victory hum sab ki hai. Ek saal ho gaya nayi federation ko bane. जितने भी हमने काम किए, जितनी भी हमने कोशिशें की, जितनी मेहनत की, ये उसका समर है. और पूरी कौम इस बात पे खुश है कि फुटबॉल में भी बाकी खेलों की तरह पाकिस्तान को ट्रॉफी मिली. जिस मेहनत से फेडरेशन, तमाम प्लेयर्स, ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं, आज हमने दुनिया को शो कर दिया कि वी कैन प्ले फुटबॉल.
4: प्रेसिडेंट मोहसिन गिलानी हुज वर्क्ड रियली हार्ड ओवर द पास्ट वन ईयर to achieve all of these things and you know, invested in the players, invested in the coaches, and today we are here as champions of the Four Nations series in Maldives. And again, this is what happens when we have a lot of professionalism from top to bottom, and I hope it continues this way, and we hope for the best for Pakistan. Pakistan Zindabad.
2: अब बात करेंगे, स्टेडियम गूंजते रहे, परचम लहराता रहा, पाकिस्तानी चाचा क्रिकेट ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया. जी सामने, चार दहाइयों तक दुनिया भर के क्रिकेट मैदानों में सब्ज हलाली परचम की पहचान बनने वाले चाचा क्रिकेट ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया. 500 से ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस में पाकिस्तान क्रिकेट का जज्बा बनने वाले चाचा क्रिकेट ने अपनी मुनफरिद शख्सियत, सब्ज लबास और वतन से बेमिसाल मोहब्बत के बायस दुनिया भर में कौमी टीम के सबसे नुमाया सपोर्टर के तौर पर जाने जाते हैं. आइए सुनते हैं चाचा क्रिकेट की जज्बा से भरपूर गुफ्तगू.
5: जितने भी हमारे फ्लैग मैन है उनमें चाचा क्रिकेट एक है, ऐसा जो है ना फ्लैग मैन है जो ए टू जेड क्रिकेट को समझता है, जिसने 69 में सियालकोट से कजाफी स्टेडियम आके पहला मैच जो टेस्ट इंग्लैंड का पाकिस्तान का देखा. लेकिन इतनी बड़ी शोहरत मिलेगी, इज्जत मिलेगी कि दुनिया भर में पाकिस्तान और इस्लाम की पहचान बन जाएगा, तो ये अल्लाह का करम है. 500 से ज्यादा मेरी इकात थी कि जब भी मैं रिटायरमेंट लूं, 500 से ज्यादा मैंने मैच देखे हो, तो वो 500 में क्रॉस करके रिटायरमेंट ले रहा हूं. बड़े मैच हैं, जब भी मियादान ने छक्का मारा तो मैं शारजा स्टेडियम में था. मुझे सबसे जो है ना तरीकी मैच जिसको मैं कहता हूँ कि 2017 में जब हमने चैंपियन ट्रॉफी का जो फाइनल जीता ओवल में, तो वहां भी मैं मौजूद था. वन टाइम मेरा पाकिस्तानी टीम में फेवरेट प्लेयर कौन रहा है, तो मेरा ये होता है कि किस प्लेयर की वजह से पाकिस्तानी टीम ज्यादा मैच विन की है, तो वो तो मेरा फेवरेट प्लेयर जो है वसीम अकरम है.
2: जी अब आखिर में बात करेंगे, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का बुखार पाकिस्तानी शायकीन पर भी चढ़ गया. जी सामिन, दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल मेले फीफा वर्ल्ड कप 2026 के आगाज के साथ ही पाकिस्तान में भी फुटबॉल का बुखार चढ़ गया है. मुल्क भर के शायकीन अपनी पसंदीदा टीमों की हिमायत के लिए पुरजोश हैं और वर्ल्ड कप के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं. याद रहे कि फीफा वर्ल्ड कप में खेले जाने वाला फुटबॉल ट्राई ओंडा पाकिस्तान के शहर सियालकोट में तैयार किया गया है. SBS की खसूसी गुफ्तगू में शाइकी ने फुटबॉल ने अपने जज्बात का इजहार किया. आइए सुनते हैं.
6: The 2026 World Cup is coming up. I'm really excited for that. I have a feeling that France or Portugal are really going to do it. It's Ronaldo's and Messi's the last World Cup. I think we should appreciate their greatness. Their legendary careers are about to come into they're about to come to an end, and I support Portugal.
7: जैसे कि आप सबको पता है कि फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. और मेरी जो फेवरेट टीम है वो पुर्तगाल है, और माय फेवरेट प्लेयर इज रोनाल्डो. एंड आई होप सो कि पुर्तगाल और फ्रांस का फाइनल और रोनाल्डो विन करे, एंड आल्सो मेसी.
8: तो मैं फीफा वर्ल्ड कप में ब्राज़ील को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि ब्राज़ील में मेरा फेवरेट प्लेयर नेमार है, और मैं इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ. और मैं चाहता हूँ कि ब्राज़ील वर्सेज जर्मनी हो फाइनल में, क्योंकि 2014 में वो जर्मनी ने ब्राजील को बहुत गंदी तरह से हराया, तो मैं चाहता हूँ कि ब्राजील अपना बदला ले.
2: SBS उर्दू के लिए मैं हूँ हाफिज मोहम्मद बिलाल.